0: कर डायटी है मुतरे बांदा माला दी है किसके गेसु कोले हसावने.
1: You're listening to KPTZ in Port Townsend, Washington.